रहाऊ। सब सुरती मेल सुरत कमाई, सब कीमत मेल कीमत पाई। ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वडे आई। सब सत सब तप सब चंगे आईया, सिद्धा पुरखा किया वडे आईया। तुद विण सिद्धि किने ना पाईया, कर्म मिले ना ही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जैस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखां जीवां विसरै मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चली है दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वडे आई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना उह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए। जे वड आप ते वड तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात। खसम विसार है ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सत गुर सत पुरखा। बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सत गुर सरणाई। कर दया नाम प्रगास, मेरे मीत गुरदेव मोकौ राम नाम परगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जान के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपतासह, मेल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रास, नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जान सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितवै उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मैं जंतु उपाए। ताका रिजक आगे कर तरया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाऊ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोए न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन भाव करिया। ऊडे ऊड आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइयै, तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावै सब त्यावै तुद जी, हर सच्चे सिर जन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावह संतोह जी, सब दुख विसारण हारा।
हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समान एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वेडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावै तुद जी से जान जुग मैं सुखवासी। से मुकत भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक कर है हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई। तू युग युग एको सदा सदा तू एको जी तू निहचल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करै सो होई। तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मेंडा साई जो तौ पावै सोई थीसी। जो तू देह सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल विजयोग मेल विछोड़या संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखै जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सर वरड़ै पई ले निवासा पानी पावक तिन है किया। पंकज मोह पाग नहीं चालै हम देखा तह डूबी अले। मन एक ना चेतस मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हौ जति सती नहीं पड़या मूरख मुगधा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा। पई परापत मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया।
अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाऊ। जप तप संयम धर्म

राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कव्यो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावो, आप हाथ दय मोहे बचावो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिय, सब बैरन को आज संगरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दय मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राख नहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशानै, कट कट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप आपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश पेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी।
कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दोष्ट दुखत हवा मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए है, ताके काल निकट न है आए है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा।

सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना माने। सिमरत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक ना जाने। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तुहे बखाने। दोहरा

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया,

त्रिपवन ज्योत रहे लेवलाई सुर नर नाथ सचे शरणाई आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख पर

हार पर्यो तौ दुआरी लेखा छोड़ अलेख छूट है हम निर्गुण ले हो उबारी सद बखसंद सदा मेहरवाना सबना दे आधारी नानक दास संत पाछे परयो राख ले हो एह बारी सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ दखणे महला पंजवा मुख हो आलाए हब मरण पशानंदो को नानक तिना खाक जिना यकीना हिक स्यों

जानव संदो मंझ पशाणु को हेकड़ो तै तन पड़दा नाहि नानक जय गुर भेटिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दातार जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शाम दे दीवान दी हाजरी पर रही गुरु रूप साध संगत जी आप वडभागी हो जो गुरु प्यार अंदर गुरु बख्शिश सदका शामा दे दीवान दी संगति रूप विच हाजरी भर के जीवन सवासा नू सफल करन दा यतन कर रहे हो। प्यार सहत अमृत बाणी दा कीर्तन आप जिया ने सत्कारयोग भाई साहिब भाई सतनाम सिंह जी तिना दे जथे पासों सरवन कीता है। आओ समा होया अमृत बाणी दी विचार दा कथा दा पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव दातार जी दी पवित्र वार मारू की वार दी आपां विचार कर रहे हां। अज पावन पवित्र पंद्रहवीं पौड़ी दे एक दो श्लोक आप जी ने सरवन कीते हन। एक श्लोक ते पंद्रहवीं पौड़ी उह शेष है उन्हां दी विचार आपां कल करांगे। अज पहले दो श्लोक आप जी ने सरवन कीते हन पंचम पातशाह जी दे उचारण कीते ने। इन्हां दो श्लोकां दी अज आपां विचार करनी है। दोहां श्लोकां विच गुरदेव पिता महाराज ने मनुखी विचारधारा मनुख दी सोच दा जिक्र कीता है कि किवें सारी दुनिया

धार अवर उपाव सब मीत विसारो चरण कमल रिदमय उतारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहु नाम हरवथ ए तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंट उठता वै सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बाछे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस सुबा को करे भली करनी सा सुबा पज हर की सरनी अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्ब निधान मैं हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन प्रभु दौ हर कै नाए दह दे सुतावत आवै ठाए ताको बिग न लागै कोए जाकै हृदय बसै हर सोए कल ताती ठांडा हर नाउ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूर्ण होए आसो भगत पाए आत्म प्रगासो तित कर जाए बसै अबिनासी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन मरै सो काचो काचा आवागवन मिटे प्रभ सेव आप त्याग सरन गुरुदेव इयों रतन जन्म का हुए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनक उपावना छुटन हारे सिमरत सास्त वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंशत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटंब अर बनता इन ते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्थार इन ते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ अस वारी झूठा डंफ झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना नाम बिसार नानक पछताना गुर की मत तू लेहे याने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जप हो अवरा नाम जपा वहो सुनत कहत रहत गत पावहो सार भूत सत हर को नाओ सह सुबाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतरस मैल बिन सजाए हो मैं बिख फैल हो हे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम संभाल षड सियान पसगली मना साध संग पावै सच तना हर पूंजी सांच करहो व्यवहार इहां सुख दरगह जयकार सर्व निरंतर एको देखो कहो नानक जाके मस्तक लेखो एको जप एको सालाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप अनक बिस्थार एक ते पय एक आराध प्राशत गए मान तन अंतर एक प्रभ राता गुरप्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तौ सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी जाचुक जान जाचे प्रभ दान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरधा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल सिंह लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एक आधार नानक मांगै नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महासुख होए हर रस पावै बिरला कोए जिन चाखिया से जान त्रे पता ने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रास रंग उपजे चाउ साध कै संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास आन दिन लिव लाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवकीनो सदा निहाल बंधन काट मुकत जन पया जनम मरण दुख भ्रम गया ऐशपुनी सरदा सब पूरी रव रहया साध संग हजूरी जिस का सा तिन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल ना भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया
ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰੱਖੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਖੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਬਿਖ ਤੇ ਕਾਢੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਢੈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਤਤ ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਹੁਕਾਮ ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪ ਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵਹੋ ਆਪ ਜਪਹੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵਹੋ ਭਗਤ ਪਾਏ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਸਾਰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਦ ਨਾਮ ਬੂਢਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣ ਤਾਸ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ ਮਨ ਤਨੇ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਓ ਨੇਤਰੋਂ ਬੇਖ ਦਰਸ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮਨ ਬਿਗ ਸਹਿ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਬਿਰਲਾ ਕੂ ਪਾਵੇ ਸੰਗ ਏਕ ਬਸਤ ਦੀਜੈ ਕਰਮ ਮਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸੰਦ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਭਗਤ ਭਾਏ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ ਹਮ ਨਿਰਗੁਨਿਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ ਏਕ ਨਿਮਕ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਬਡਿਆਈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾ ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ ਭਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਲੋਕ ਸਾਰ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਫਿਰ ਜਾਪ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਬ ਆਕਾਰ ਇਹੋ ਕਾਸ਼ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਪਾਪ ਪੁਨ ਤਬ ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਤਾ ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਣ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਸੰਗ ਕੁਮਾਤ ਜਬ ਇਸਕਾ ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ ਤਬ ਹਰ ਕਸੂਗ ਕਹੋ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਜਬ ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਭਰਮ ਆਪਣ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀ ਜਾ ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ਤਬ ਬੰਦ ਮੁਕਤ ਕਹੋ ਕਿਸ ਕਹੋ ਗਨੀ ਜਬ ਏਕ ਹੈ ਹਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੋ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਤਬ ਸੇਵ ਸਕਤ ਕਹੋ ਕਿ ਕਠਾਏ ਜਬ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੈ ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ ਆਪਨ ਚਲੇ ਤੋ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ ਤਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੋ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ ਜਬ ਅਵਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ਤਬ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ ਤਬ ਕੌਣ ਛੁਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰ ਜਾ ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ ਤੈ ਬਿਨ ਮੈਣ ਕਹੋ ਕਿਆ ਧੋਤਾ ਜਹ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਨ ਤਹ ਕੌਣ ਕਉ ਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਿਮਾਨ ਜੈ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਤਹ ਛਲ ਸ਼ਿਦਰ ਲਗਤ ਕਹ ਕੀਸ ਜਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ ਤਹ ਕਿਸੈ ਭੂਖ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣ ਸੰਗ ਬਨਾਈ ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੋਤ ਭਾਈ ਜੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ਤਹ ਬੇਦ ਕਤੇਵ ਕਹਾ ਕੋ ਚੀਨ ਜਬ ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਉਰ ਧਾਰੈ ਤਉ ਸਗਨ ਆਪ ਸਗਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰੈ ਜਹ ਆਪਣ ਊਚ ਆਪਣ ਆਪ ਨੇਰਾ ਤੈ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਤ ਜਨ ਹੋ ਆਪ ਜਹ ਅਸ਼ਲ ਅਸ਼ੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ ਉਹਾਂ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਆਦੇਸ ਤੇਹੋ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸ ਜਹ ਏਕ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ
तह कौन अचिंत किस लगे चिंता जह अपन आप आप पतियारा तह कौन कथय कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पाहुचा जह आप रचियो प्रपंच अकार तेहो गुण मैं किनो बिसथार पाप पुन दय पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संगोचै तो नानक एक जय अवगत भगत तह आप जय पसर पसार संत प्रताप दोहो पाख का आपे तने उनकी सुभा उनहु बने आपे कौतुक करे आनंद चोज आपे रास भोगन निरजोग जिस भावै तिस आपन ना इलावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेसुमार अथा अगंत अतुला है ज्यो बुलावो त्यो नानक दास बोलै श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपति आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप पिस्थार जात सभावै तां श्रेष्ठ उपाय अपने पण नए समाये तुम ते भिन्न नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जा कौ प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सब तक है हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख है तिस को न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस ताज अवर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामे रहे व्याप प्रत पालै जीअन बहु पहांत जो जो रचियो सो तिसै त्यार्थ जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक एक जानिया जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न बिरथी जाए सेवको सेवा बन आई हुकम बूझ परम पद पाई इस ते ऊपर नहीं विचार जा कै मन बसया निरंकार बंधन तोर पय निर्वैर अंधन पूजै गुर के पैर ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मेल करहु आनंद गुण गावह प्रभ परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरण का यह सुआओ आठ पहर प्रभ पेखो नेरा मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हलत पलत दोए लेहो सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुर की पूरी देखिया जिस मन बस है तिस साच परीखिया मान तान नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मान ते पाओ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगाह निभाए खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवे जाहे तिस ते दूर कहा को जाए उबरै रख नहार तिहाए निरपाव जपै सगल पाव मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जान काओ कोई न पहुँच नहार सर ऊपर ठाडा गुर सूरा नानकता के कारज पूरा मात पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेकत उधरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो होत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पहे अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान

नानक मन परगासु। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समगिरी एकस घट माहे, अनेक रंग नाना दृष्टाहे। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तह नाद, कहन न जाई अचरज बिस्माद। तिन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक तिस जन सोजी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहया भगवंत। तरन माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूरन प्रतपाल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंट दह दिसे समाहे। तिस ते भिन्न नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मैं देख, ससियर सूर नक्षत्र मैं एक। बाणी प्रभ की सब को बोले, आप अडोल न कबहू डोले। सर्व कला कर खेलै खेल, मोल ना पाइय गुण अमोल। सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत, तार रहो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं एहो बिसास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिस की ए रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, करन करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर पी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस भावे ता करे बिस्थार, तिस भावे ता एकंकार। अनक कला लखी नह जाए, जिस भावे तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कही है दूर, आपे आप आप भरपूर। अंतर्गत जिसे आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्व भूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पेखनहारा। सगल समगरी जाका तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। सब कह मध अलिप तो रहै, जो किश कहना सो आपे कहै। आग्या आवे आग्या जाए, नानक जा पावे ता लय समाए। इस ते होए सो नाही बुरा, उरै कहो किने कश करा। आप भला करतूत अतनी की, आपे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संग राच। ताकि कत मित कही न जाए, दूसर होए ता सोजी पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाई लए प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का इह सो आओ, जन कै संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार। सलोक

अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेसो पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्या गौतरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वाओ नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमुलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लगा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महा तो कह माथे नानक उदरे तिन कह साथे सरन जोग सोन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मेट गए बैर पए सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूरन होई सेव की सेव आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभतारी नानक निभ ही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमने सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सो होते निधान सर्ब इच्छा ताकि पूरन होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहुर न होवे आवन जान हर तन खाट चलाए जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मध सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बिसराम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस

समस्तुल जुबाहें के साहिब किराहें के नरकंग प्रणाशें बहसुल निवासें के सर्वल गवान है हमेशल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है अधिशल अलेख है हमेशल अपेख है जमीनुल जमा है अमी कुल इमा है करीमुल कमाल है के जुर्रत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मितो सुबास है कि अजब स्वरूप है कि मितो पे भूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनांग है कि मितु अपांग है मद पहाड़ चंत्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम हर भर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनपवनाश मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल तल मुदा मंचिज अंग असन अपांग उपमा अपार गतमित उदार जल तल अमंड दिश विष अपांड जल थल महंत दिश विष बेअंत अनपवनास्त्र तरतुरास आजान बाहु एक सुदाहु ओंकाराद कथनीय नाद खल खंड खयाल गुरुवर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंचिज गातु आजिज न बात अंचज गातु अनरंज बात अंटुट भंडार अंडट अपार आडीठ धर्म अत टीठ कर्म अनप्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंड से परते पर है करुणा कर है अजपा जप है तपा तप है अकृता कृत है मृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है कृता कृत है धरणी त्रित है मतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है मृता मृत है अजबा कृत है मृता मृत है निर्नायक है कलकायक है विश्वंपर है कुरुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पवभंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस की जस है पुजंग प्रया चंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संसात रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादंग विपूते कलंकार रूपे कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अभय अपू अजु अनास अकाश अगांज अपांज अलख अपक अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम काम गाह अटा अनाथे प्रमाते अजोनी अमोनी नारागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग अगंजी अलेखे पुजंग प्रयाचंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासी अगंजुल नामे समस्तुल निवासी निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय बेपूते गजाय गनिमे हरियं करियं करिमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं वेपूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं वेपूते वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सुवैये
श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख फिर कर युग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदाधिक संसमूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाय कृपा हूं ते एक रत्ती बिन एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदित पावन के गौन को जात निवारे पारी भुजान के पूप पली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे नेते पहे तो कहां पहे पूप तंत को ना गई पाए पदारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे पूत पवेक भगवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पर श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीरथ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक सो संजम नेम अनेक बसे कै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पे कै पौन आहार जति जत तार सब सुचार हजार के दिख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख शुद्ध सिपाह दुरंत दबाह सुशासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हली न हलेंगे तोर अरीन मरूर मुवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार बचार सार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मुवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गडान के तोड़न हर सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सबको सरनायक जाचक नेक सुवेक दिवैया दानव देव पुनिंद निशाचर भूत पवेक पवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सुपताप थपेंगे पुन परता पुन बाढ़ जय तुन पापन के बो पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानविंद्र जिंद्र निराधव जौंतर लोक को राज करेंगे कोट स्नान गजा दिख दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सचिपत अंत से जमफास भरेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है पग ते नर फिर न दे तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो भक्त्यान लगायो नाथ फिर लिये सात समुन्द्र लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो साच कहूं सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज तरयो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा में काहू पछा को शीस निवायो को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो कूर गिरया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायु कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। इको अंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काब हुआ पहा दे मुहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मूर्च्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आ सुधरिए पूर्ण हुए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें चाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बरचाऊ सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय हु जो सदा हमारे पच्चा श्री अस्तु जु करे हो रक्षा राख लिहो मुझे रख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बान दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव की यो वेद राज ब्रह्मा जूती यो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै जचनो पजायो आदंत कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी
सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिव कन को सब गुण सुख दियो सत्रण को फल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत फले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान काट काट के पट पट की जान जब उद करक करा कर तारा प्रजा तर तब देह पारा जब आ करक करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन से सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जा को भेव न पावत भेदा ताको कृपाहन अनुमानत महा मूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हत न भेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लका न जाए पसारा के बिच सजा प्रथम संसारा एक कै रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कही पूपा अंडज जेर से तज की नियुत भुज खान बाहुर रच दीनी कहूं फूल राजा होवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा शिगरी श्रेष्ठ दिखाय चंब वा जुगा स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रनकाता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है रक्षा हुई ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट रह तत्काला कृपा दृष्टन जाहि निहरि हो ताके ताप तनक मैं हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब हुई दुष्ट चाच वस कह न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारु कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दहले हो उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाय कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता किल विक्षकल देह कुहरता दुष्ट दोखिन को क्षय करता श्री हस्तुजा पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछित फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रह हो जो या की एक बार चौपाई को कहे चौपाई संबत सत्रह सहस पनी जय अर सह सुन तीन कही जय पाद्र सुदिष्ट मीरवारा तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते कुआंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो हे बकान्यो दोहरा सगल

कहो तुहारु द्वार बाहि गहे की लाजे अस गोविंद दास तुहार। वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद को अंकार। सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माई। सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया। सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया। शब्दूता गाव हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना। सबना गल्ला सुमरत स्वामी सो क्यों मन विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे। घर ता तेरे सब किचे जिस देह सो पावे। सदा सिर सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजी शब्द कनेरी। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाईया कर सान सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुरबान कीता गुरु विटाओ जिस दिया है वडियाईया। कह नानक सुनहो संतोह सब धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै। कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत दिवस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे। कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। सच लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बाजो। क्या करे वेचारिया तुद बात समर्थ कोई नाही। कृपा कर बनवारिया एस नो हुर थाउ नाही। शब्द लाग सुवारिया कह नानक लिवै बाजो। क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सब को कह। आनंद गुरु ते जानिया जानिया। आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया। कर कृपा किलवे कट्टे ज्ञान अंजन सारिया। अंदरो जिन का मुँह तुटा तिनका शब्द सच्चा सुवारिया। कह नानक हो आनंद है आनंद गुरते जानिया। बाबा जिस तू दे सोई जन पावे। पावे ता सो जन दे जिसनु होर क्या करे विचारिया। एक भरम भूले फिर है दा दिस एक नाम लाग सुवारिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावे। कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे। आव हो संत प्यारे हो अकत की करह कहानी। कर है कहानी कथ केरी कित दुआरे पाई है। तन मन तन सब सौप गुर को हुक्म मन्ने पाई है। हुक्म मन्ने हो गुरु की रागाव सच्ची बाणी। कह नानक सुनहु संत हो कथे हो कथ कहानी। मन चंचला चतुराई किने न पाया। चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया। एह माया मोहनी जिनेत भरम भुलाया। माया ता मोहनी तिने कीती जिन टगौली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विटहो जिन मोह मीठा लाया। कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया। मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। कुटम तू जे दिखदा चलै नाही तेरे नाले। साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ। ऐसा काम उले न कीचै जितंत पछुताईऐ। सतगुरु का उपदेश सुन तू हुवै तेरे नाले। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तिरंत न पाया अंतो न पाया किने तेरा अपना आप तू जानहि। जी जन सब खेल तेरा क्या को आख वखाने। आखै ता विखै सब तू है जिन जग तू पाया। कह नानक तू सदा अगम है तिरंत न पाया। सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा किनी सच्चा मन वसाया। जी जन सब तुदु पाए कवेक प्रसन आया। लब लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनु आप तुटा तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी बिक मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना। खने हो तिखी वाल हो निकेत मार्ग जाना। गुरु प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समानी। कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली।
ज्यो तू चलावे त्यो चलै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाहे तिवै चलै, जिन्ना मार्ग पावहि कर कृपा, जिन्ना मिलाहि से हर हर सदा त्यावहि, जिसनु कथा सुनाहे आपणे से गुरुद्वारे सुख पावहि, कहे नानक सच्चे साहिब ज्यो पावै तिवै चलावे, एहो सोहेला सब सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सुहेला, सतगुरु सुनाया, तिनकै मन वसिया, जिन तुर हो लिखिया आया, एक फिरै कनेरे करह गल्ला, गली किनै न पाया, कह नानक शब्द सोहेला, सतगुरु सुनाया, पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए, गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सह सो पवित संगत सुभाइया, कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया, कह नानक से पवित जिन गुरमुख हर हर त्याया, करमी सहज न उपजै बिन सहजै सहसा न जाए, न जाए सहसा कितै संजम रहे, कर्म कमाए सहसा जीव मलीन है, कित संजम धोता जाए, मन धोवो शब्द लागो हर स्यो रहो चित लाए, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एह सहसा इव जाए, जी हो मैले बारो निर्मल, बारो निर्मल जी हो ता मैले, तिनी जन्म जुवै हारिया, ए तिसना वड्डा रोग लगा, मरण मनो विसारिया, वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही, फिर जो बेतालिया, कह नानक जिन सत तजिया कूड़े लागे, तिनी जन्म जुवै हारिया, जी हो निर्मल बारो निर्मल, बारो ता निर्मल जी हो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोय पहुंचे नाही, मनसा सत समाणी, जन्म रतन जिनी कटिया भले से बन जारे, कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले, जी को सिख गुरु सेती सन्मुख हुए, हुए ता सन्मुख सिख कोई, जी हो रहे गुरु नाले, गुर के चरण हृदय ते आए, अंतरात्मा समाले, आप छठ सदा रह परने, गुर बिन वरना जाने कोई, कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख हुए, जी को गुर ते विमुख हुए, बिन सतगुर मुक्त न पावे, पावै मुक्त न होर थै कोई, पुछो बबे किया जाए, अनेक जूनी भरमावै बिन सतगुरु मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाख चरणी, सतगुरु सब सुनाए, कह नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी, जिनको नदर कर्म हुवे हृदय तिना सुमानी, पीव हो अमृत सदा रहो हो हर रंग, जपे हो सारंग पानी, कह नानक सदा गाव हुए सच्ची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी, कह दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आंख वकानी, हर हर नित कर है रसना, कहे आ कछू न जानी, चित जिनका हिरलिया माया, बोलन पैर वाणी, कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी, गुरु का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ सुमाओ, शब्द सेती मन मिलया सच्चा लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए, कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ, शिव सख्त आपो पाए, कह करता आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आवे कह गुरमुख किसे बुझाए, तोड़े बंधन हुवे मुख शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे, किसियो लिवलाए, कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्ते सार न जानी, तत्ते सार न जानी, गुरु बाजो तत्ते सार न जानी, ते गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी, ते गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी, गुर कृपा ते सी जन जागे, जिना हर मन वसिया बोलहे अमृत बाणी, कह नानक सो तत पाए, जिसनु अन दिन हर लिव लागे, जागत रहन विहानी, माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है, विड़दाता जे अगन में आहार पहुंचावे, उसनो क्यों पोए न सकी, जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभाली है, कह नानक के विड़दाता सो क्यों मनो विसारी है, जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया, माया गण सब इको जेही करतै खेल रचाया, जातिस भाणा ता जमिया परवार भला पाया, लिव चुटकी लगी तृष्णा माया मरवरताया, ए माया जितर विसरै मोह उपजै पाओ दूजा लाया, कह नान गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया, हरिया पा मुल कह मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए किसै विटो,
ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਇਆ ਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੋਪੀਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਹਰ ਆਪ ਮੁੱਲ ਕਹਿ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਹਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਜਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀ ਹੋ ਲਾਹ ਕੱਟਿਓ ਦਿਹਾੜਿਓ ਧਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੂਆ ਬਣਜਾਰਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਹੋਰ ਕਿੱਤੈ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ ਬਹੁੜ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਰਸਾ ਵਿਸਰੇ ਜਾ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਤੂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਦ ਵਿੱਚ ਤਾਤੂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਾਏ ਜਗ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਤੂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਉ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹਰ ਗਾਉ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਪੈ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੂ ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਕ ਹੈ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਇਹ ਨਿਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਇਹੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰ ਕਹਿ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨਿਤਰੰਦ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈਏ ਸਰਵਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮੰਤਨ ਹਰਿਆ ਹੂਆ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ ਸਚਲ ਕਵਿਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾਂਦਰ ਰੱਖ ਕਹਿ ਵਾਚਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧ ਤਿਸਦਾਂਤ ਨਾ ਜਾਹੀ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ ਜੀਉ ਗੁਫਾਂਦਰ ਰੱਖ ਕਹਿ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੁਹਿਲਾ ਸੱਚੈ ਕਰ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੁਹਿਲਾ ਘਰ ਸੱਚੈ ਜਿੱਥੈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਆਵਹੇ ਸੱਚੋ ਤੇ ਆਵਹੇ ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵਹਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵਹਿ ਇਹ ਸਤ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮੈ ਜਿਸ ਬਖਸੀ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹਿ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹੇਲਾ ਸੱਚੈ ਘਰ ਗਾਵਹਿ ਅਨਦ ਸੁਨੋ।

सल माना सिद्ध सैयत पढ़ पढ़ कर है विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हन।

सत्संग दे। बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार्षिक पाची दसवीं प्रथम भगवती से मर कह

सो कहटल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए, दर्शन परस गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी नूर अरसोह कुर सोह चटी है, तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सूही महला पांजवा।

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहा सुख पाला। नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिंगार करे अत प्यारी। बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दार घर महला सेज सुखाली। एहनिस फूल

बंधन बंद पवावै, नानक राम भगत सुख पावै। गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काले घर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी भरम भुलाया, जो उपजै सो काल सुंगारिया। हम हर राखे गुर शब्द बिचारिया, रहा माया मोहे देवी सब देवा।

छोड़ै बिन सतगुर की धीरा। काल जाल जिहवा अर नैनी, कानी काल सुनै बिख बैनी, बिन सबदे मूठे दिन रैनी, हिरदय साच वसै हर नाय। काल न जोहे सकै गुण गाए, काल न जोहे सकै गुण गाए, नानक गुरमुख

पहला, गुर प्रसादी बूझ ले तो होए नबेरा, घर घर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा, बिन गुर शब्द न छूटी है देखो विचारा, जे लख कर्म कमा वही बिन गुर अंधियारा रहाओ, अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यों कही है, बिन गुर पंथ न सूझही कित बिद निर्बही है।

त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया, नानक हौमै मार ब्रह्म मिलाया। गौड़ी महला तीजा ब्रह्म।

छपाई, ज्ञानी बूझे सहज सुपाई, गुरमुख साच रहा लिव लाए, हौ मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सत गुर दाता शब्द सुनाए, धावत राखे ठाकर हाए, पूरे गुरते सोझी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, किस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरमुख बूझ कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमूलक गुरमुख पावे।

दास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हृदय रविया चरण निवास।

मैं तृष्णा सब अगन बुझई बिन से क्रोध खिमा गह लई हरे आपे कृपा करे नाम देवै गुणमुख रतन को विर ला लेवै नानक गुण गावै हर अलख।

मैल पाखंड भरम गवाए, हर अमृत सर गुर पूरिया, मिल संगति मल लह जाए, मन कर हला मेरे प्यारे आ, एक गुर की से

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु सवारी साध संग जी, आप जी वडभागी हो गुरु चरणा विच बैठ के घर बैठ के नेता प्रति अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ नाल जुड़दे हो। गुरुदेव जी सबना दियां हाजरियां दर प्रवान करन, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव साडे हिरदयां विच सतगुरु जी विसा देन। अगाध बोध बाणी पढ़दे आं, बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईयां हन, आप संगत कृपालू सतगुरु जी बख्शन योग ने। गुरुदेव जी कृपा करन सबना नूं दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन, अपनी बाणी बाणी प्रति सतगुरु जी प्रेम प्यार बख्शिश करन जी। भुल्लां चुकां दी खिमा समूह संगत दे चरणां विच बेनती है कि अज गुरुद्वारा साहब विखे प्रथम गतका मुकाबला हो रहा है। खालसा स्कूल दे अंदर गतके दियां टीमां आपो अपने जौहर विखा रही हैं, सो जिन्हां संगतां ने गतके दे जौहर देखने हैं वह खालसा स्कूल विच जा करके उन्हां टीमां दे जौहर वेख सकते हैं। अज सारा दिन मुकाबले चलने हैं। बेनती है 27 मई तो लैकर के 31 मई तक साडे पास सिख पंथ दे महान कीर्तनी भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले पहुंच रहे हैं, सो आप जिया ने हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करने हैं जी। भुला चुका दी खिमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: पंडित जी कीर्तन द्वारा समाप्ति है और यह पूजा चुका दिया आप जितना बख्शिश करनी विद्वान गुणी जन संगत विच उपस्थित हन तो जाहिर है अज असी अनजान हाँ तो कोशिश है कि होर सुचजे ढंग दे नाल कीर्तन कर सकीए शुद्ध राग दे नाल शुद्ध बाणी दे नाल आप जी नूं कीर्तन सुना सकीए ये मनोरथ है साडा तो आप जी असीस बख्शिश करनी भुला चौका दियां सारे को खिमा बख्शिश कर देनिया तो आप जी फतेह अर्ज करते हां वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह।

प्यारी साध संगत जी, दोनों ही परिवार अते सारे साख संबंधी वड्डे भागां वाले हो, जिन्हां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपनी निघी गोद विखे बिठा करके अमृतमय बाणी दे लाहे प्राप्त करन दा सुभाग बख्शिया है। संगा परिवार अते सैणी परिवार वधाइयां दे पात्र ने, जिन्हां दे बच्चे अज गृहस्थ जीवन विच प्रवेश कर रहे हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करन, बच्चियां दे सिर ते मेहरां भरिया हथ रखन, गृहस्थ जीवन दे सारे सुख बच्चियां दी झोली विच पा के सतगुरु जी नवाजना करन, दोनों परिवारां दी आपस विच बण आवे, इह साडी अरदास बेनती है। आनंद कारजां दी मर्यादा दे अनुसार दो शब्द 5-7 मिनट विच गायन करके प्रभु जी पासों खिमा दे जाच हो जावांगे। आओ प्यार सहित सारी संगत।

जिस डिठ है सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताई, सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब

अनुसार गरीब नवाज सतगुरु जी आप जी ने तरस कीता। अज आप जी के हजूर सुभाग जोड़ी काका मनजोत सिंह संगा, सपुत्र सरदार परमजीत सिंह संगा, बीबी मनजीत कौर संगा अते बच्ची प्रीत कौर, सपुत्री सरदार हरविंदर सिंह सैनी, बीबी गुरदीप कौर सैनी गरीब नवाज इस सुभाग जोड़ी दे आप

0: लाख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे निम के एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। बड़े खुशियां ते मंगा पर समय से तन तन गुरु ग्रंथ साहब जी दे दरबार दे अंदर हाजरियां भर के बख्शा लै रही परम सत्कार जो सत्संग जीओ आप गुरां दी बख्शी हुई फतेह सांझी करन दी कृपालता करनी सब ने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल पुरख दी धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी की अपार बख्शिश हुई है कि काका मनजोत सिंह संघा ते बच्ची प्रतीक कौर जी दे शुभ आनंद कार्ज गुरमर्यादा अनुसार निर्विघनता सहित संपूर्ण हुए ने। इत्थे दस दें मनजोत सिंह संघा सपुत्र है सरदार परमजीत सिंह संघा ते बीबी मनजीत कौर संघा जी दा ते बच्ची प्रतीक कौर है सपुत्री सरदार हरविंदर सिंह सैणी ते बीबी गुरदीप कौर सैणी जी दी। इस बेअंत खुशी भरे समय ते जिथे मैं अपने वालों इथों की समूह प्रबंधक कमेटी वालों इथों की समूह संगत वालों ते आए दोनों पासियां तों सारे प्रौणियां वालों जिथे सुभाग जोड़ी नूं लख लख वधाई दिंदा हाँ उत्थे उन्हां दे माता पिता रिश्तेदारां साख संबंधियां मित्रां दोस्तां सहेलियां सभनां नूं लख लख वधाई दिंदा हाँ ते अकाल पुरख पास अरदास करदा हाँ जोड़ी जीवे जुग चार तिहारी भाव उन्हां दी जोड़ी सदा लई बणी रहे। अकाल पुरख उन्हां नूं गृहस्थ जीवन दीआं खुशियां बख्शदा होया सदा सदा चढ़दियां करां दा जीवन बख्शे ते नाल उन्हां नूं हुण मैं बेनती करां दोनों नूं सुभाग जोड़ी नूं विशेष तौर पर मैं कह रहा कि आप दोनों ने अज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे चुके चार प्रकर्मां लै के बिना बोले इस जीवन के अंदर एक दूजे का साथ निभाउण लई प्रण कीता है। सो चेता रखण परी संगत दे विच ते नाल गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने आप जी ने यह प्रण किया है दोनों ने। सो वह गुरु आप जी का प्रण पूरा करे साड़ी अरदास है ते नाल अरदास है दोनों परिवारों की सदा लई आपसी प्यार सत्कार बनया रहे। ते हुण मैं बेनती करा सत्कार योगिया ने नवदीप सिंह जी नूं कि उस भाग जोड़ी नूं सन्मानित करनगे जी जो साड़ी मर्यादा है। खड़े होके भी लै सकते हो तुसीं सन्मान ते बैठे बैठे भी एक पुछ लीए जी एक मिनट खड़े होके लैना सन्मान के बैठे बैठे जी तुहाडी मर्जी आ दोनों तरह ठीक आ। सो बहुत चंगा किया सुभाग जोड़ी ने किन्ना अदब किया साज दा बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोले सो निहाल सत श्री अकाल। मैं सुभाग जोड़ी का धन्यवादी हाँ कि उन्होंने उठ के आप बड़े प्यार से अदब नाल अच्छरों पाओ जो बख्श किए गए सन उस स्वीकार किए ने ते ए आप दोनों ये चेते रखना होना इन्हों वाल देख के आप जी का सारा प्रोग्राम धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बख्शिश द्वारा होया है। तो इस तो अगे चलीए हूँ मैं इतने होर भी कह देव कि कई चिर बाद मैं देखिया किसी सुभाग जोड़ी ने कहा कि असी थले कोई कपड़ा नहीं बिछाना आनंद कार्ज वेले कमाल की गल है। सो मैं इसलिए जकारा छड़दा उन्होंने सत्कार वजो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सो मैं हुण धन्यवाद करदा हाँ साढ़े कीर्तनी जथे भाई साहब हसनाम सिंह जी गुरदासपुर वाले जिन्होंने बड़े प्यार ते श्रद्धा नाल सारा कीर्तन किया। धन्यवाद है भाई ज्ञानी नवनीत सिंह जी का जिन्होंने सारा प्रोग्राम जो सी वो निभाया अरदास नामों का पाठ से हुक्मनामा सारा कुछ। धन्यवाद है भाई साहब कृपाल सिंह अटवाल जी का जो बहुत सेवा करते हैं इस गुरु घर विखे अज भी उन्होंने सानू हुक्मनामा साहब करा तो बाकी सेवावें उन्होंने आके कीतियां उन्होंने हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद है साढ़े ऑडियोविजुअल रूम के लीडर ते उन्हां दी टीम दा हंकार सिंह संघा भाई सरदार हंकार सिंह संघा तो उन्हां दी टीम दा जो सारा प्रोग्राम ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੋ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਧਨੋਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਤੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਵਿਆਹ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪਰ ਵਸਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ।
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਜੋਤ ਦੇ ਹੱਥੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ। ਟੂਡੇ ਇਜ਼ ਅ ਡੇ ਆਫ ਇਮੈਂਸ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ and rest of our entire family. I want to thank